0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है। अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकता वो इलाके दे बदनाम होवे जबर खां, पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं एवें नहीं लैके जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लैके

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना सो इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उन्हों चंगियां निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जा देना या मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे सो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारू।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे हैं। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां। पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है, बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है अते आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा मिलके, बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो सा

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होई जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एक ही बार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दोबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी ता के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां एको ही किस्म बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इस प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं एको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जय कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सत्र को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लह तने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने
1: ठहरे राज कौन कर करने
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किम
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा बड़ा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वरतें वरतारा जग जथा
0: जिमें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च
1: श्री मुख सुंदर तीकह तथा
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह दी हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी
1: खाएगो खर्च लेंगो लाल
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने खाएगो तो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल उस सरकै दे सस्से नूं लैणा ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है ये खालसे का एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार
0: खारी तो भाव खारा समुंदर उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना खा लक्ष्मी तो लल्ला ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ

0: आप जी ने यह कलयुग के समय के वीर योधा खालसा प्रगट किया है जो सारे नालों उत्तम है श्रोमणी है
1: सर्ब श्रोमण खालसा रचियो पंथ सुखदाई
0: ये सारे नालों श्रोमणी खालसा पंथ जो हर प्रकार दे नाल समर्थ है जो सुख दे देण वाला सुख नूं भोगण वाला दूसरियां नूं सुख देण वाला पर उपकारी पंथ रचिया है
1: बिनेक गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए
0: एक कौम है एक खालसा पंथ है जेड़ा एक जो गंदा धूआं है तंबाकू उहदे तो रहत हो के जगत दे विच शोभनीक हुंदा बाकी लोग कोई भी है भावें गंदा धूआं सारी दुनिया

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल। कभी ये सिख है
1: मेरो सिख आन सब त्याग पिखी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणा नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: जिथे मेरी इच्छा होवेगी मैं शादी करांगी।
1: खोज न करै न निश्चय धारै।
0: सो निश्चय नहीं करदी, खोज ना करदी है कि मैं आप अपना पति चुनना है।
1: तप विशाल को तापत जोए, तेज सहत मम पति वै तोए।
0: वो कहनी मैं किसी आम व्यक्ति नाल शादी नहीं करनी, बहुत कोई तपस्वी बंदा जिहड़ा होवे ना, भगती करन वाला, उस बंदे नाल मैं शादी करनी है। ये उन्हें अपने मन दे विच धारण करके अपने पिता कोले अपनी गल जाहर कीती है।
1: होजत रही बिपरे कहेरा, जिन तन तापियो बहुत बडेरा।
0: एक ब्राह्मण सी, बड़ा तपस्वी सी, उन्हें बहुत भारी तप किया। यह सी मुसलमान अजमेर शाह हुणी। वो ब्राह्मण नूं हुणे चाहुंदी कि यह तपस्वी बंदा है, इहदे नाल शादी कीती जावे।
1: वेद मंत्र हस्ता मल जाई, दृढ़ तप रहै उच्च बेती माई।
0: तो वेद जिहड़े मंत्र सीगे उहनूं हस्तामल हुंदा, हाथ दे उत्ते औले वत्त पए, सामने नजर आउंदे, भाव कंठ सी वेदां दे सारे मंत्र। सो बहुत भारी जिहड़ा तप सी इहने कीता होया सी, तप दी शक्ति इहदे विच बहुत ज्यादा सी।
1: राहक क्रिखी बाड लै जावै, बीन बीन दाने तेले आवे।
0: फिर यह की करता सी, जदों जिमींदार अपनी खेती वढ़ लेंदे सी, उदो बाद जिहड़े कणक दीआं बल्लीआं खेतां विच रह जांदीआं सी, वह चुण के लिया के उन्हां चों कणक कढ के उहदे आटा पीस के उहदी रोटी खांदा सी।
1: जिस बिलोक अजमेर कुमारे, तप विशाल की निद जिन भारे।
0: उन्हों देख के अजमेर शाह की लड़की ने जो देखा कि बहुत भारी तप किया इस व्यक्ति ने, उन्हें शादी की इच्छा अपने पिता नूं दस दित्ती।
1: बुद्ध बलते कर बिद उपाया, तिसी बिपर सो ब्याह कराया।
0: बड़ी अपनी बुद्धि दे बल करके अपने पिता नूं कह के जोरो जबरी किवें ना किवें उस ब्राह्मण दे नाल इहने शादी कर लई।
1: दिजबर के रात दुचताई, मैथन करे धर्म बिन साई।
0: तो इस करके मन दे च बड़ी दो चित्याई खड़ी होगी ब्राह्मण दे कि मैं तो शादी करनी, पहली गल तो मुसलमान ने, मलेश कौम है, मैं ब्राह्मण पवित्र बंदा, ये गलत खाणिया वाले बंदे मलेश कौम नाल मैं शादी किवें कर सकदा। चलो जे शादी हो भी गई है तो मैं माड़ा कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि माड़े कर्म करन दे नाल मेरा धर्म भ्रिष्ट हुंदा है।
1: रहो विचारत बस न बसायो, पकड़ मलेचन सदन सुवायो।
0: सो विचारदा रहा, पहलां तां घर ही ना वड़िया करे। फिर इन्हां दी फौजियां ने फड़ के, राजे दी फौज ने फड़ के महिलां दे विच इन्हां दे कमरे विच लिजा के बंद कर दिता है।
1: द्वार किवार संजत करे, निशा बिखै बासो कर थिरे।
0: सो दीवार जिहड़े सी दरवाजे बंद कर दिते, संगलियां ला दित्तियां, रात नूं उस कमरे दे विच इस नूं वाड़ दिता।
1: इस बिद दिजबे बस पा जबै, वेद मंत्र को पत कर तबै।
0: इस तरीके नाल जदों ब्राह्मण ने देखिया कि मेरा तां धर्म हुण सत्यानाश होण लग्या है, ते इहने मंत्र बड़े आउंदे सी, इहने वेदां दे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिते।
1: कोट लोको चों दिश रचियो, तिसी अंतर फिर वै कर बचियो।
0: इहदे कोल इक मंत्र सी, दुआले लोहे दा कोट बन जांदा किला, जिवें कीर्तन 16 पढ़न ते महाराज ने कहा लोहे दा किला बन जाया करेगा। इस तरह ही इहनां कोल मंत्र सी कि लोहे दा किला बन जांदा, इहनूं जबरदस्ती जदों राजकुमारी दे कमरे विच छड्डियांदा उहनां ने, इन्हें मंत्र पढ़ के लोहे का कोट चारे पासे बना लिया अपने।
1: तब अजमेर सुता अव लोका, लो दुर्ग ते चौं दिश रुका।
0: तां अजमेर शाह की पुत्री ने देखिया भी यह तो बड़ा पंडित भगती वाला, तपस्या वाला, मंत्र जंत्र बड़े जानदा, इन चारे पासे लोहे का किला बना लिया।
1: कुछ ने जतन चलियो बित राते, खोल किवाड़ दे पिक प्राते।
0: कोई जतन ना चलिया, फिर सवेर वेले जाके कवाड़ खोल दिते।
1: और जामनी प्राप्त जबै, घर मैं रोक दियो दिज तवै।
0: फिर जदों रात हुई, फिर वो ब्राह्मण नूं पकड़ के उस कमरे दे विच बंद कर दिता।
1: ये अंतर सुपतन के काल पठै, मंत्र आए कोट बिसा।
0: वो रात नूं सौण समय फिर अपना मंत्र पढ़ लिया करे, फिर लोहे दा किला बन जा करे, फिर कुछ ना हो सके। तो
1: बिन चिंता सुपतै सुख पावै, भई फोर बार निकसावै।
0: बिना किसी चिंता तो आराम नाल सोया करे, लोहे दा कोट बना के राजकुमारी निर्जतन सारे जतन निष्फल हो गए। सवेर वेले अपना मंत्र पढ़े, लोहे का कोट हट जाया करे, फिर बाहर आ जाया करे।
1: तब अजमेर शाह के पास मंत्र शक्त दिज करत प्रकाश।
0: उस वक्त अजमेर शाह दे कोले मंत्रां दी जिहड़ी शक्ति सी ब्राह्मण दी उन्हें प्रगट कर दिती।
1: गयो मलेचन सब समझाए, इसको जानो सुगम उपाय।
0: जदों राजे नूं पता लग्या कि मंत्रां नाल लोहे दा कोट कर लैंदा, उन्हें सारे मलेश अपने कट्ठे कीते, काजी मलाने दूजे तीजे, कहिंदे ओए इहदे कोल इहो जिहा मंत्र कित्थों आ गया, इहनूं भ्रिष्ट करन दा कोई तरीका कढो, लड़की नाल शादी कीती इहने, तां आपां इह सारे मंत्र जंतर जाप तप संजम धर्म सब भ्रिष्ट करन दा कोई तरीका कढ लो हुण तुसीं।
1: इसको

0: अत्यंत ही भैड़ा सुभाव पलटन वास्ते भूत प्रेत डाकनिया हुंदियां ने जिहड़ियां अथवा डीट हुंदी नजर लगनी ये मसले आम तौर ते दबा दिते जांदे ने ये कोई चीजा नहीं हुंदियां ये फालतू गल्लां ने पर फिर लोग उधर नूं क्यों भजदे ने सो ऐसियां चीजां दा प्रभाव गुरबाणी अंदर गुरां ने मन्निया है जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी कसवटी ते सब चीजां आ जांदियां ने फिर मुनकर नहीं होना चाहिए समका उन्होंने डट के आपां मुकाबला करना चाहिए गुरबाणी के नाल ना कि इधर उधर भटकना चाहिए महाराज ने इत्थे जपजी साहब का इसे करके महात्म दस्या
1: मन जीतन रण मैं धरा राज काज सुख
2: राज काज दे विच मैदाने जंग जान दे विच राजनीति दे विच बाणी तो हर जगह ही सहायता कर सही है जेड़ा मर्जी महाराज जी तो आप मंग लईए
1: मिलने गिलने बंद मैं राजयोग उत्साही
2: बंद मैं बंद हों रिश्तेदार रिश्तेदारों मिलना गिलना वो तो आपां नूं पता ही कई चीजां दा भी जदों बरात आउंदी है उदों शब्द पढ़ते हम घर साजने आए बाणी पढ़ते हैं आनंद कारजां विच फिर लावां दा पाठ पहला कीर्तन हुंदा है महाराज कहिंदे जपजी साहब भी पढ़िया करो जपजी साहब का पाठ जिहड़ा है ये पढ़ना रिश्तेदारी च मिल जाना राजयोग दे विच कहण तो भाव कि एक चिंता मणी हुंदी है चिंता दूर करती है एक काम तेन गऊ है उहदे कोल कोई इच्छा कर लो पूरी करती है एक कल्प ब्रिछ है पर सतगुरु ने कहा कि इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाक है बस है काम तेना काम तेन जपजी साहब दे बस विच ही है फिर आपां काम तेन नूं कहनूं देखना है जां कल्प ब्रिछ वल कहनूं देखना है जां किसे होर वल क्यों देखना है महाराज कहिंदे फिर भाई जिहड़ा जपजी साहब पढ़दा है उहदा तां सीधा ही मतलब है कि उहदियां सारियां इच्छावां चाहे वह रजोगुणी है चाहे वह सतोगुणी है चाहे वह भगती है चाहे वह योग विराग ज्ञान उम्र का वाधा मंगिया चाहे घर का कोई काम है चाहे परलोक का कोई काम है सारे कारजा विच जपजी साहब की बख्शिश हुंदी है
1: इन कारज की अटक मैं पंच पचीसा जाप
2: हुण इन्हां कारजा विच जिहड़ा अड़िका पै जांदा है सो इस करके कहिंदे ने मूल मंत्र दा ही मुख है कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है ना वो तुसीं अभ्यास जां तां समां रख के करो बई रोज घट्टो घट्ट दो घंटे मूल मंत्र मैं पढ़ना है जां फिर नवे बंदे लई माला बई माला कुछ रखो बई मैं इन्नियां माला जिहड़ियां ने हर रोज करनियां ने घट्टो घट्ट 10, 11, 15, 20, 25 माला मूल मंत्र दियां अभ्यास वजों करनियां ने जे आपां थोड़ा करदे हैं मूल मंत्र ते आपां कम्मां दी इच्छा बहुत करदे हैं इस करके क्योंकि गृहस्थी दे कारज ही बहुत ज्यादा हुंदे ने तां ते सतगुरु महाराज कहिंदे मूल मंत्र दा अभ्यास जिहड़ा है वह थोड़ा ना करो हर वक्त पंजां प्यारिआं ने तां इही हुक्म कीता जद अमृत छकदे हैं भाई देखो अमृत वेले पंज बाणियां तो पढ़ लईआं हुण बाकी दा समां की करना सुखमनी साहब आसा दी वार ते चलो डेढ़ घंटा लग गया बाकी फिर कहिंदे मूल मंत्र ते गुरमंत्र उठदे बैठदे श्वास श्वास इन्हां दा जाप जिहड़ा करन नूं पंजां प्यारिआं दा हुक्म आपां नूं उही इत्थे दर्शाया भई हर वक्त मूल मंत्र दा अभ्यास करदे रहो
1: 36 जाप कर लाख अर्ध ते लाख
2: हुण इह जिन्ना कु कारज है कम देखिआ जांदा कम है इन्ना कम है 5000 मूल मंत्र है 25000 दा जाप है 36,036 अखरा भाव पुरातन समय विच 36 अखरा नानक होसी भी सच तक है 25 अखरा जिहड़ा उह जाप गुरप्रसाद तक है इन्हां चीजां नालों हट के आपां इको ही गल करिए कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है जिहड़ा पंजां प्यारिआं ने बख्शिश कीता है इहदा जे चलो जे तुसीं इह कहो भी इह तां बहुत ज्यादा सत हुंदा नहीं इन्ना तां फिर घट्टो घट्ट 5-6 माला रोज कर देनिया चाहिए या 11 माला ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਪਾਠ ਜਾਂ 5 ਪਾਠ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जेडे मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल पुरख सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ दी बाणी जिन्हें भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने ये चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी, ताइयों खालसे नूं बच

अनुग्रह, क्योंकि इनका ऋषि ना अंदरों असी ते गुरुदेव सिखो ऐसे बेमुख होए, ऐसे बेमुख होए सानू ता सुख चंगे लग गए, आपा ता रब दियां दातां लैके ऐसे बेहोश होए, रब कौन? हुण गुरुद्वारा किथे, हुण रहत की, हुण अमृत की? मेरे साहब कहिंदे ने धर्म राय जाबर, फिर क्या मुख लैके केड़ा मुंह लेके जाएगा? तेन कदी डर नहीं आया रोमा की बिद भी करा लगे सिखा बोल आखो वाहू, तेन कदी डर नहीं आंदा जद तू साबत सूरत रब दी? बोलो साबत सूरत, फिर बोलो आ स्वरूप है ना, ए रब का स्वरूप। पर वटे पूरे, मछहरे पूरे, दाढ़ा पूरा, सिर ते पग, हरभजन सिंह योगी ने अमेरिका च प्रचार किया है, वो एक भजन विच कहिंदा आखो वाहिगुरु, जरा गज के बोलो कहिंदा, एक दिन मैं यहूदिया की गली विचों दी लंघिया, ध्यान दियो यहूदी ओ कौम है जिन्हां नूं साडे वांग भट्ठियां च साड़िया गया, उन्हां दे वी कीमां कीमां कीते गए, बड़ा जुल्म होया उन्हां ते यहूदियां ते। कहिंदा मैं लंघ रहा सां ते दो चार पांच बंदे जदों मैं लंघना ते उन्हां इस तरह बाहां खड़िया करके अपनी बोली च करना हु हु हु, मैनूं पता नहीं सी लगदा की कहिंदे। कहिंदा एक दिन मैं उन्हां दी परोड़ बुजुर्ग औरत नूं कहा, बोली समझदी सी, कहिंदा मैं उन्हूं कहा मां, अंग्रेजी विच पुछिया कि जदों मैं इथों दी लंघदा ते ए बाहां खड़िया करके हु हु हु करदे ने, शायद ए मेरे इस स्वरूप नूं वेख के तंग हुंदे ने, कल नूं मैं गली बदल दूंगा, एहो ही गल आ, ए वाकई स्वरूप वेख के तंग हुंदे ने। ते उस बुजुर्ग औरत ने योगी कहिंदा मैनूं गल ना ला के आख्या, नहीं वा मेरे नाल ए गल नहीं हो, तू इधरों आउणो ना हटी, ए लोग ते तेरे सत्कार वजों खड़े हो जांदे ने, ते आ जिहड़ा तू कहिंदा ना हू हू करदे आ, ए ते अपनी बोली ते अपने खुदा नूं कहिंदे, हे खुदा तेरा लख वार शुक्र है तेरी सूरत वेखण नूं मिली आ। सिते पग, मुंह दे उत्ते मछहरे, दाड़ा एडा डा लम्मा, ए तां रब दा स्वरूप है। ते तुसी दो दो पैसे दे ब्यूटी पार्लरां ते जाके रब दे स्वरूप दा सौदा करदे हो, तोड़दे हो, तोड़दे हो मेरे मुंह तो रब दा स्वरूप। एक मैं बच्ची दा एक बार वचन आसन सोता सुनाया सी, गुरु जी सिखो आखो वाहिगुरु, जरा गज के बोलो वाहिगुरु। एडी कि छोटी बच्ची, सत अठ साल दी, आसन सोल मस्कीन साहब बैठे, बड़े बड़े रागी ढाडी बुजुर्ग बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे, ते इन्नी कु बच्ची ने आड़ के एक स्लिप रखी स्टेज ते कि मैं एक कविता बोलनी, आखो वाहिगुरु। ये कहती मैं एक सात साल की बच्ची कहती कविता बोलनी, अका करता बच्चे आखो वाहिगुरु, सारे ने आख्या इन पहलू बोल लैण दो, फिर चंगे चंगे लहर गंभीर बुलारे बोलने। वो बच्ची सात साल की स्टेज ते खलोती, जे मैं झूठ ना आखा ते घट तो घट डेढ़ क लख का पंडाल सी, इन्नी संगत बैठी बंगाल दी बिहार दी, गुरु गोबिंद सिंह साहब दा पुरब मना रहे। उस बच्ची ने छोटी जी तोतली आवाज विच एक लख नूं मुखातिब हो के आख्या, गुरु दे सिखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हैरान सी सारी दुनिया, हैरान हो के सारे ने फतेह ते बुलाई, सारे ओहदे मुंह वल चंगी तरह वेखण लग पए, ए छोटी जी बच्ची की बोलू? सारी संगत नूं मुखातिब हो के कहिंदी, गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी कविता दा शीर्षक है नीला घोड़ा, ध्यान दियो की जी, सारे बोलो ना नीला घोड़ा। छोटी जी बच्ची सारे नूं मुखातिब हो के कहिंदी, दुनिया दे लोगो अज मैं कविता पढ़न लगी हां ते मैं मुखातिब होण लगी हां नीले घोड़े नूं, ते मैं नीले दे चरणां च हाथ जोड़ के कहिंदी, नीलिया तू क्या भागा वाला है, तू पंथ दे मालक नूं अपनी पिठ ते वाया, तू पुत्रां दे दानी नूं अपनी पिठ दे उत्ते वा के किन्नी सैर कराई, धन धन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे वेखा। अज तो रात नूं स्वरूप चुके लै के जांदे

0: वचन है कलयुग में, कलयुग में एक नाम आधार आधारण आता। जे तुसी आखो ना कलयुग दे विच कोई आ रहा होगा तो 20 रुपये 50 100 करोड़ रुपया आसरा, ना ना ना, कोई भैन आसरा नहीं, कोई पुत आसरा नहीं, कोई भरा आसरा नहीं, कोई सज्जन रिश्तेदार दोस्त मित्र कोई आसरा नहीं। कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक नाम आधार। समझ लो कल्ला बोलो नहीं, गुरसिखो तुहाडे चरणा ते मैं मस्तक रख के बेनती करदा, बचन अपनी सुरत दे कागज ते लिखो कि कलयुग विच एक नाम दा ही आसरा है। कलयुग विच एक
1: नाम दा
0: जपो ना वाहे।

जियो छुटे जा बदे दे दार अगन में दिना जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुपन समान हरिदा रस गाला हरिदा नाम जपला ये जो वेख रहा अंबाले मेरा घर है तेरे धिया पुत्र ने बाबा तेग बहादुर जी का सुपना ही की है जी कोई जान लवे थे अको सतनाम श्री एक गुरमुख प्यारे को पूछता है सुपना की तरह टूटा था दो तरह का सुपना है जे सुपने की गल तुर पी के सुपन सुपन ये जगत सुपने की त्याई न्याई है बड़ी तरह तेग बहादुर पिता जी ने कहा जो सुपना और पेखना ऐसे जग को कई थाई सुपने के प्रमाण गुरु तेग बहादुर महाराज एक था लिखे चंचल ये जीव की है चंचल बुद्धि दे चंचल सुपने ही रुझायो लो चंचल ये चंचल जीव सुपने की उलझा पिया सुपना ही देखी जा दो तरह का सुपना होंगे अक सतनाम श्री एक बंद अखदा एक खुली बंद अख का सुपना रात नुत्या अक सतनाम श्री जो आप सो जन्ने होंगे की रात न की कुछ बन जाने आखो सतनाम श्री रात का सुपना है मगर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते यह सुपना एडा खतरनाक नहीं टेलीफोन की घंटी बजी जाए तो सुपना टूट जाता है पता ना आप जी बोलो वाहेगुरु टेलीफोन की घंटी बजे तो सुपना टूट जाता है कोई मोटे तो फट के आके जगा दे सुपना तो कई बार आप कहने मिलो सानू जगाता बड़ा सोहना सुपना वेख रहा की कहने उठना नहीं चाहते दो मिनट बड़ा सोहना सुपना है सुपना कभी सोहना हो सुपने का मतलब होंगे झूठ जो नहीं सो दे सकते जो नहीं अज अस जिथे खलोते हैं फिर भी जो नहीं वो समझ रहे अपने आप अको सतनाम श्री ये गल पक्की मान लो ये शरीर है नहीं अको सतनाम श्री सुपने आ शीशा वेखे शीशे दे विच अपने आप नूं पग बन्नण लगे वेहदे हो ना उथे भी पले तो पला जन डिया जे तुसी बोलते हो भी बोलता है जे तुसी हिलते हो भी हिलता है जे सब कुछ करता एक दिन उन्होंने खलो के क्यों नहीं कहते पानी का गिलास ले गया सुपने और दिस रहा शीशे च साडे वांग हिलता जी नूं तुसी समझ बैठे कि हैगा है आप कह रहे ना हैगा है उनको पानी का गिलास ले लिया कभी अर्थों का यह कि वह दिस रहा है नहीं दिस रहा है साहब कहते तुम भी एक सुपना वेख रहे हो संसार के लोग खुली अख का साहब कहते ने आप कहने मेनू कल उठाया आज हम करते रहते हो ना कई बार मैं बंगला साहब जी तो कथा करता अमृत वेले की मेनू बहुता गुरु कहता मौत से बोल आखो सतनाम श्री वाह मौत एक योजा बचन जे तो बंदा डर के जाग सकता है आखो सतनाम श्री बाबा कबीर जी तुम जागे पता की कहना कहना मैं बैठा सा बंदगी कर रहा ते मेरी मां ने मेरे मोढे ते आके हाथ रखा पुछे थे की करता है कर देता ना लग सीधा करो फिर नाम दो उठे थे की करना है ते बैठा सी मणिया च मणिया समझ शमशान पर कभी ने दान ने तो जो क्या क्या मां मैं ते बंदी ना गया पुत्र ठाकुर बारे जाना मंदिर में जा मस्जिद में जा इबादत गवा में जा इथे मणिया च की कहना मां आखिया ही किसी की भैन सड़ रही उसे किसी का संस्कार हो रहा है यह किसी भैन नहीं एक किसी मां ही और किसी का भरा ही और किसी का प्यो ही आ किसी का चाचा ही सड़ रहा जिस तरह यह सड़ रहे ना मैं अपने मन न समझा कि कह तक वीर सुनो मन मेरे मैं इन डरा सुनो कह तक वीर सुनो मन मेरे यही हवाल कल तू किरण किरण करके तेरिया हड्डिया उठ जा मैं अपने आवाज आवाजा देना अक सतनाम श्री साहब कहते ने यह जरा सोहना सुपना तुम देख रहे हो किसी ने पूछा जी सुपना कितना टुटता है वह कहना जो सुपना जी आवे जिदन ओन यह पता लग जाए ना कि मैं सुपना वेख रहा सुपने जरा बैठा है ना सुपना जरा वेख रहा है ओनू ए पता लग जाए कि मैं बस उधर सुपना टुटना शुरू हो जाता जेडे भगत जना गुरमुखा ज्ञान हो जाता है कि असि दुनिया के उ जो कुछ वेख रहे

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड प्रो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आप बजुर्गां ने वेखे खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दियां माला टिंडा खिंचण लई मन नूं बलद बनाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडां नूं खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया वट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जोड़ के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया महाराज शरीर ते जेहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम खेतां विच ते क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बगन लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा फिर आखिया महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा वचन करदा मुंह चो अमृत डोलदा नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इस सवासां दी माला बना मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्लेओ अमृत आउणा नहीं ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओह तो गज के बोलो ना तो

मेरे कंतना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों धन। प्यार वाली रू मेनू नी पता अर्थ बोध का पता कि नहीं कहते सहजे जा रही उसे सहजे नहीं पढ़ना छेजे छेजे पति तो पत्नी की गल चलन रही है जेने इस जीव आत्मा ने कपड़े पाए ने लब रूपी लीतड़ा लब रंगाए लब विच रंगे कपड़े जिस जीव आत्मा ने पाए ने ओ पति परमेश्वर की छेज ते नहीं जा सकता क्यों धन धन मने स्त्री छेज उस मालिक की छेज का आनंद कितना मान सकती है जेडी लब च रंगी पता लगा जेडी हुण भी मैं आप जी नूं जेड़ा वचन दृढ़ करा रहा ओ है मन बैराग भया भबे नाल बोलो मन बैराग

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रवदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुखो गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी बख्शिश दा सदका आप जी सरबत माई पाई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे दर्शन करन लई आपो अपने घरां तों आए हो, वडभागे हो। सतगुरु ने एक था बाणी दे विच ऐसा दर्ज कीता है, बाह पकड़ जिस मार्ग पावो, ओ जीव सतगुरु गरीब नवाज तेरी पावन चरण शरण विच पनाह विच आउंदा है। जिन्हों तो जीवन दे नरबा विचों गुजरदिया होया बाहों फड़ के आखे चल गुरुद्वारे चलीए, एवें नहीं। सतगुरु दी पावन गुरबाणी विच यह दर्ज आ कि जिहदी बाह फड़ के सतगुरु गुरुद्वारे लियावे वह गुरुद्वारे आउंदा है। अज दी इस घड़ी दे विच आप जी अपने आप नूं वडभागे जाणो कि तुहाडे पावन शरीर नूं धन गुरु नानक पातशाह दे दीन दुनिया दे मुबारक हाथ लगे, तुहानूं बाह फड़ के सतगुरु ने अपनी शरण विच लियांदा है। इथों हुण जिहड़ियां घड़ियां सतगुरु दी शरण विच आप जी ने गुजारनियां ने, सतगुरु कृपा करे ये 20 मिंट का समा साडे जीवन दे विच ओ गल समझा जावे जिहड़ी अज दे पावन उपदेश विच गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक इस महीने राही आपां नूं कहणी चाहुंदे ने, उपदेश देना चाहुंदे ने। हे जीव आत्मा, अषाढ़ दे महीने विच तू की कमाई करनी, अषाढ़ दा महीना किन्ना नूं तपश वाला लगदा है, ते किहड़ियां जीव आत्मा नूं अषाढ़ दा महीना सोहणा लगदा है। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਣ

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

खुराक खाया करो सर्व रोग का औखद नाम बोलो सर्व रोग का औखद सारिया बीमारियां दी दवाई दे सतनाम श्री वाहिगुरु जेड़ा रब दा नाम है अवर अपाव सब त्याग दारू नाम लिया छड़ दियो सारे अपा करने अपन बड़े मिलते ने ओ जी औलाद आखे नहीं लगती ते लागो गवांडी की सलाह देंदे की करो कोई उपा करो अपाय शब्द वरतदे ना इथे गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सगल अपाव सब त्यागया अवर अपाव सब सारे अपाव करने छड्ड दित्ते आख्या की कीता फिर तुसीं